0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।
4: जब चाहे

मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हेटरों के मुंह पर जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो ज़ूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: ஆஸ்திரேலியா வித் இமிகிரேஷன் தான் மசலா. நான் ஜாவ் இதர் உதர் சித்தே ஆவ் ஐ எம் அட்வைசர் அப்படி மா போலி வித் சம்ஜன் துஹாட்டி லோடனும் நாளை வரையாந்தோ ஸ்கில் விசா 186 189 190 482 491 ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் பார்ட்னர் விசா பேரண்ட் விசா ஜா ஸ்டூடெண்ட் விசா தோ பிஆர் தக் ஹர் இமிகிரேஷன் ப்ராசஸ் லே எக்ஸ்பர்ட் கைடன்ஸ் ஆஜ் ஹி பரோசே நாள் சம்பர்க் கரோ ஐ எம் அட்வைசர் கால் 02 9063 1618 ஹுன் பேராமேட்டா சிட்னி அதே நியூ டெல்லி விச் வி आई एम एडवाइजर
1: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
2: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
1: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमिग्रेशन
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਰਪਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM

इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: ਕੈਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
1: सिर्फ फिल्मी नहीं, ए है पंजाब दी सब तो वड्डी चोरी, द ग्रेट पंजाब रॉबरी।
0: जदो एक जोकर तख्त ते बंद है तो राजा नहीं बंदा, वो पूरे राज नु सर्कस मना लेता है।
1: स्टारिंग राज कुंद्रा, पायल राजपूत, गर्विता सद्वानी अते होर कई साथी कलाकार। 7 अगस्त तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: इंडिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर
1: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावना को समझो दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर रेडियो हांजी 1674 AM अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए हांजी हांजी अभी ना कहना ना जी

0: You are listening.
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio
0: Hanji. Stay tuned.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji,

0: ஆஸ்திரேலியா விட் இமிகிரேஷன் தான் மசலா. நான் ஜாவ் இதர் உதர் சித்தே அவுட் ஐ எம் அட்வைசர் அப்படி மா போலி வித் சம்ஜன் துஹாட்டி லோடனும் நாளை வரையாந்தோ ஸ்கில் விசா 186 189 190 482 491 ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் பார்ட்னர் விசா பேரண்ட் விசா ஜா ஸ்டூடெண்ட் விசா தோ பிஆர் தக் ஹர் இமிகிரேஷன் ப்ராசஸ் லே எக்ஸ்பர்ட் கைடன்ஸ் ஆஜ் ஹி பரோசே நாள் சம்பர்க் கரோ ஐ எம் அட்வைசர் கால் 02 9063 1618 ஹுன் பேராமேட்டா சிட்னி அதே நியூ டெல்லி விச் வி
1: यार तू इतने आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
2: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
1: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमिग्रेशन com.au
3: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur. I'm a Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
4: Bale bale bale.
3: Bale bale bale.

0: station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना। तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बोथ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो।
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
7: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji

0: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनना होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना ना जी ना जी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो वजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

ही ऐलानी जा सकती है। राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्परिलिया ने देश दे विच एमरजेंसी ऐलान की हुई है। राष्ट्रपति एस्परिलिया ने मंगलवार नू सब तो ज़्यादा प्रभावित शहर परेरा का दौरा भी किया। दसिया के 2600 के करीब लोग प्रभावित हुए ने, 200 लोग हाले भी लापता दसे जा रहे हैं। उथे भारत दियां भी खबरां दी सांझ पाईए ते भारत दे विच सब तो पहला सियासत दे नाल जुड़ियां हुई खबरां, जिथे अमरीकी राष्ट्रपति दे कौंसलर पीटर नवारो ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नाल चंगे संबंधां दे विच ने और छेती टैरिफ मुद्दियां नूं सुलझा लिया जाएगा। न्यूज़ एजेंसी ANI दे एक सवाल दे जवाब च नवारो ने यह गल कही कि लिंडसे ग्राहम बिल नूं लैके अमरीकी राष्ट्रपति नूं हमायत हासिल है और इस दे विच भारत दे उत्ते 100% वाधू टैरिफ लगाउण दा प्रस्ताव सी, जदके अमरीका भारत जिहड़ा ट्रेड डील है वह जद सिरे चढ़ जाएगी तो इस किस्म के किसी भी टैरिफ नूं भारत दे उत्ते लागू नहीं किया जाएगा। उथे भारत की पार्लीमेंटरी दे विच पार्लीमेंट दे विच यानी संसद दे विच मानसून सैशन का अज 18वां दिन है। सरकार पेंडिंग बिलों नूं लैके अगे वधाउण दी कोशिश करेगी। इस सैशन नूं शुरुआती दिन तो ही बार बार कार्रवाई टालन दे चलदियां बंद होना पिया है। हर रोज़ कार्रवाई प्रभावित हो रही है, विरोध प्रदर्शन देखने मिल रहे ने। सरकार ने भी कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले महीने CJP के प्रोटेस्ट के दरमियान की गई कार्रवाई के विच जरूरत तो ज़्यादा जिहड़ा हिंसा का प्रयोग किया गया पुलिस के द्वारा, उसके सवाल जिहड़े विरोधी धिर की तरफ तो पूछे जा रहे हैं उन्हां दा जवाब देने के लिए तैयार ने। हालांकि जवाब देने के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। इस तों इलावा केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा राज्यसभा के विच अहम बिल पेश किए जाने की भी अज के दिन उम्मीद है। वैसे पिछले कई दिनों तो अमित शाह पार्लीमेंट दे विच नहीं पहुंचे ने, कांग्रेस की तरफ तो भी इल्जाम लगाए गए ने। इन्हां विधायक जिहड़े बिल जिहड़े पेश किए जाने ने उस दे विच केरल दे नाम दे अंदर बदलाव दा बिल साल 2026, कौमी सहकारी विकास निगम सोध बिल 2026 भी शामिल है। उथे लोकसभा दे विच केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी खाण ते खनिज सोध बिल 2026 नूं भी अज दे दिन पेश कर सकते ने। दस दईए कि इस दरम्यान कांग्रेस की तरफ तो दलीलां भी दित्तियां जा रही ने। बेशक संसद के बाहर ते अंदर भाजपा ते कांग्रेस आमो सामने ने। मंगलवार के दिन भी संसद भवन के प्रमुख जिहड़े गेट सी उन्हां दे विचों एक मकर द्वार के बाहर अजीब जी स्थिति देखण नूं मिली। सत्ताधारी धिर ते विरोधी धिर आमो सामने हो गए, नारेबाजी चलती रही। सत्ताधारी धिर ते विरोधी पार्टियां संसद मैंबरां दी जिहड़ी गैर मौजूदगी दे विच ही पार्लीमेंटरी सैशन नूं रद्द भी कर दिता गया। दस दईए कि हुण कांग्रेस की तरफ तो दो प्रमुख मंगां ने, एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्लीमेंट दे विच आण ते दिल्ली दे विच विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दरमियान जिहड़ी पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाई हुई सी उस नूं लैके स्पष्टीकरण देण, ते दूजा अयोध्या दे विच राम मंदिर दे चंदे दे विच हुई गड़बड़ दे मुद्दे दे उत्ते भी चर्चा की जावे। इस दे जवाब दे विच सत्ताधारी धिर भाजपा ते उसकी जिहड़ियां सहयोगी पार्टियां ने उन्हां दी तरफ तो NDA धड़े की तरफ तो कही गई है गल कि वह जिहड़े राहुल गांधी ने दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। एक पासे तो वह दिल्ली के जिहड़े जंतर मंतर दे उत्ते हुए प्रदर्शनां दे उत्ते सरकार तो जवाब दे चाहते हैं, दूसरे पासे वह खुद जवाब नहीं दे रहे जिथे झारखंड दे विच कांग्रेस की हमायत वाली हेमंत सोरेन सरकार की अगवाई दे विच पुलिस की तरफ तो प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के उत्ते लाठियां बरसाइया गई ने, अथू गैस के गोले दागे गए ने, उन्हां दे उत्ते भी जवाब होने चाहिए ने। सरकार दिल्ली दे विच विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दे लैके जिहड़ी सख्ती की गई सी उस नूं लैके जवाब देने दे लई तैयार है, पर हाले ये नहीं दस्या गया कि अमित शाह आखिरकार कदों पहुंचणगे। उथे रांची दे विच चल रहे प्रदर्शन के दरमियान अंदोलनकारियों नूं हिरासत दे विच लए जाण दीआं अफवाहां दे दरमियान रांची दे SP पारस राणा ने बुधवार दे दिन अज सवेर वेले सफाई दित्ती। उन्हां कहा कि प्रदर्शनकारियों नूं हिरासत दे विच लैण दे लई उह धरने वाली थां दे उत्ते नहीं सी पहुंचे। प्रदर्शनकारी JPSC ते JSSC दीआं प्रीख्यावां दे विच होईआं गड़बड़ियां दा दोष लगा रहे ने। हालांकि विद्यार्थी नेतावां दी तरफ तो दोष यह मढ़िया गया कि सीनियर पुलिस अधिकारियों की अगवाई दे विच ही उन्हां दे उत्ते लाठियां बरसाईआं भुख हड़ताल कर रहे विद्यार्थियों जबरन उतों चुकया गया। दस दिए कि हाल फिलहाल झारखंड के

इंडिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
3: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावनाओं को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुन रहे होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂ ਜੀ 1600 ਚੌਕ ਕਰਤੀ ਹੈ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: This station is now the ultimate power in the universe.
4: Radio Hanji, 1674 AM.
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: प्रभाव तो ट्रका बजते
1: पैदल ही मैं जंगल गड्डी फिर तो मैं कुछ आराम ना थोड़ा होता यार आज ना पिछे जंगल ना मैं पिछे मैं वैसे मैं चल थोड़ा जिन्होंने नहीं कहते एडवेंचर
0: के लिए जंगल पानी ले गए
1: यार पाजी अच्छा उस तो बाद की है ये तो चलो फिर भी ठीक है मैं क्या जिदा
0: कहते बाद तो से पैदल ही गए होंगे कल
1: मैं उधर नहीं होते मेरे पता लग गया ना मैं चले थे वो हो जाए जंगली
0: शेर की चीज है
1: शेर नहीं है पर कंगारू है तो चलो थोड़ा सा ठीक है वो क्योंकि एक्चुअली मैं
0: पैदल नहीं होता पाजी ओदा भी दिमाग जदों फिरदा
1: अच्छा वो कर देते हैं
0: बड़े खर दिमाग
1: होते अच्छा जी मैं तो जपन गया आ चलिए लग गए तो हाथ फिर गया ये
0: ना ना ना ओने चंगा हाथ फेर देना ताडे कंगारू दी लत वजी कहे
1: मैं भज गया
0: अच्छा
1: मैं हले मतलब वीक कदम अगे भजया बाद में देखे मेरा फोन नहीं है चंगी किस्मत मैं फोन इथे विचकार कंगारू उथे
0: बल्ले ठीक है
1: फिर मैं देखता रहा मैं मेरे वाल नहीं आ रहा मेनू मैं अंदाजा च लाया मैं इसे रास्ते च किते आया हाँ इसे रास्ते चो दी जाना वा ठीक है मैं थोड़ा जा अगे जा गया तो शुक्र है फोन थले डिगा है मैं फोन फड़िया मैं नहीं फिर अगे पिछे देखिया मैं दे तेरे दी वापस वापस मैं भजो यार
0: अपने जवाक नु की एग्जाम्पल दिती है
1: मैं ओही क्या मैं क्या भाई अगे तो कंध हाथ लाए कल एडवेंचर कर नहीं जाना इतने
0: कैंगरू कहंदे किस किस्म दा म्यूजिक सुनदे ने मैनू म्यूजिक तो याद आया हुण तुहानू
1: गाने सुनाया म्यूजिक अच्छा कैंगरू म्यूजिक सुनदे कैंगरू
0: किस किस्म दा म्यूजिक सुनदे ने
1: यार भाई ये तो
0: आईडिया है
1: तुहानू उहनां को पुछणा पैणा वा ए अच्छा ओह वाला सुनदे ने
0: हॉप
1: हिप
0: जवाक एक नवी चीज इनवेंट की जो वाइफ ने शॉपिंग करनी है कह दो भी जा तू शॉपिंग कर
1: ठीक है
0: उथे बुक शॉप लभ लो कोई उस शॉपिंग सेंटर चे जवाक नू लै जाओ उथे लभो कोई डैड जोक्स वाली बुक जोक्स सुनाओ उन्हें कहो नाले तू पढ़ नाले मैनू सुना मैं तुहानू आई कैन टेल यू टू स्मॉल जोक्स एंड वन लॉन्ग जोक पहला केड़ा सुनना
1: वन लॉन्ग जोक
0: पहला मैं तुहानू टू स्मॉल टू स्मॉल जोक जोक जोक लॉन्ग जोक जो
1: पंजाबी वाला जोक बनाता आज लास्ट जो हाँ जोक सुना लगाओ जी फिर हाँ जी
0: सुनो अज अपने कोई स्पेसिफिक गाने नहीं नवे नवे सुना रहे हैं।

0: अक्षरा जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: लादे

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji।

0: are listening.
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio
0: Hanji. Stay tuned.
2: अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।

0: तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Haji 16748.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1674 AM।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: गौड़ी सुखमी महला पंजवा सुखमी सुख अमृत प्रभ नाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जस प्रसंबर एक है नाम चबत अगनत अनेक है
0: वेद पुराण सिमर सदाखर कीने राम नाम एक अखर
1: जिनकै जे जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै
0: कांखी एक है दर्श तुहारो नानक गुण संग मोहे उधारू
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभ कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभ सिमरत काछ बिघन लागै प्रभ कै सिमरन आनंद न जागै
1: प्रभ कै सिमरन भव न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभ कै सिमरन सार कै संग सर्व निधान नानक हरंग
1: प्रभ कै सिमरन सिद्ध नौ नित प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी
0: प्रभ कै सिमरन होय सो भला प्रभ कै सिमरन सो फल फला
1: सिमरै जिने आप सिमराय नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभ कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभ कै सिमरन तिसना बुझै प्रभ कै सिमरन सब के सूझै
0: प्रभ कै सिमरन नाहि जम तरसा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभ कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभ को सिमरै सी धनवंते प्रभ को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभ को सिमरै सी जन परवान प्रभ को सिमरै सी पुरख प्रधान
1: प्रभ को सिमरै सी बेमुहताजे प्रभ को सिमरै सी सर्व के राजे
0: प्रभ को सिमरै सी सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभ को सिमरै सी पर उपकारी प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी
1: प्रभ को सिमरै सी मुख सुहावै प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै
0: प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता
1: प्रभ को सिमरै तिन अंध घनेरे प्रभ को सिमरै बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते आंध न जाग नानक सिमरन पूरै भाग
1: प्रभ कै सिमरन कारज पूरै प्रभ कै सिमरन कभु न जूरै
0: प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी
1: प्रभ कै सिमरन निचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभ कै सिमरन अनहर चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार
1: सिमरै से जन जिन कुर पर मैया नानक तिन जन सरनी पैया
0: हर सिमरन कर भत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए
1: हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर सिमरन मैं आपने अंकारा
0: कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक श्लोक
0: दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाथ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: या मात पिता सुतमीत ना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय
0: जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरा चलै
1: जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी
0: अनक पुनः चरण करत नीता रह हर को नाम कूट पापर हरै
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे
0: सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हि सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै
0: अनक माया रंग तिखना बुझावै हर का नाम जपत आगावै
1: जे मार्ग हो जात कीला तै हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नाम मन सदा धियाइए नानक गुरमुख परमगत पाइए
1: सूटत नाही को लख बाही नाम जपै तै पार पराही
0: अनक बगंजह आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै
1: अनक जून जन्म मर जाम नाम जोत पावै विश्राम
0: हो मैला मल कब हो ना धोवै हर का नाम कूट पाप होवै
1: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइए साधकै संग
0: जे मार्ग के गन जाहे न कूसा हर का नाम उहा संग तोसा
1: जै पेंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पंथ तेरा को न सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू
1: जा महा बयान तप प्रोघाम तिहार के नाम की तू ऊपर छाम
0: जहां तिरखा मन तुझ आ करखै तह नानक हर हर अमृत बरखै
1: भग जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उधरे जन कोट
1: हर जस कत सन दिन रात हर हर औखत साध कुमार
0: हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान
1: मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन कै बिरद विवेकै
0: हर का नाम जन को मुक्त जोत हर कै नाम जन को तृप्त भोगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग
0: हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोजो हर नाम जपत कछ नाहि बिजो
0: जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा
1: हर हर जन के माल खजीना हर धन जन को आप प्रभ दीना
0: हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी
1: ओत पोत जन हर सराते सुन समाद नाम रसमाते
0: आठ पहर जन हर हर जपै हर का भत प्रगट नि छपै
1: की भगत मत पौ करै नानक जन संकेते तरै
0: पार जात इहो हर को नाम काम तिन हर हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा
0: नाम की महिमा संत रिदवस है संत प्रताप दुर सब नसै
1: संत का संग उड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम दे आई है
0: नाम तुल का छबर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए
1: सुखमनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दो श्लोक
0: बहुत शास्त्र बहुत सिमरती पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि
1: आप ताव ज्ञान सब ध्यान खर शास्त्र सिमरत वख्यान
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मध्य फिरे ਲਿਆ
1: ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁ ਰਤਨਾ
0: ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ
1: ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ
0: ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀਸਰ ਥੀਵੈ
1: ਅਗਨ ਮਾਏ ਹੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕਨਕ ਅਸ ਹੈ ਬੁਰਦਾਨ
0: ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਯਮਤ ਸਾਧਨ
1: ਨਿਮਕ ਨਿਮ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤੋ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ
0: ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ
1: ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੈ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ
0: ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਾ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ
1: ਦੇਹੀ ਕੋ ਬੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਟਰੈ
0: ਜਲ ਤੋ ਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀ
1: ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ
0: ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜੋ ਕਾ ਭਾਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰਾਪੈ
1: ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੰਨੀ ਬੂਜੈ ਕੋਟ ਪਾਵ ਦਰਗੈ ਨੀ ਸਿਜੈ
0: ਛੂਟ ਸਨਾਹੀ ਊਬ ਪਾਇਆਲ ਮੋਹੇ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ
1: ਅਵਰ ਕਰ ਤੂ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿੰਨੀ ਮਾਨੈ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ
1: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ
0: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾ ਲੋਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਮੈਂ ਛੋਰੇ
0: ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਰੈ
1: ਜਿਸਨ ਕੋ ਪਵ ਦਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ
0: ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕੈ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ
1: ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਨੀਚਾ ਸੋ ਉਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ
0: ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀਰੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ
1: ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਟਾਨਾ ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ
0: ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪੋਂ ਨਿਹਲੇ ਪਾ
1: ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ
0: ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇ ਬਹੁਦਾਨ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
0: ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣੋ ਆਪੇ ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ
1: ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਏ
0: ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ
1: ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ
0: ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਾਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ
1: ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਨੂਰ ਸੰਬਖਾਣੀ
0: ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਘਟ ਬਸੈ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਵ ਨਾਮ ਭਗਜਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ
0: ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਹ ਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕੀ ਆਤਿਸ਼ ਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਈਆ ਕੀ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦਸ਼ਟਾਨੀ
0: ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨੈ ਉਬਾਰਿਆ
1: ਬਾਰ ਬਸਤਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੈ ਦੂਤ ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ
0: ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖ ਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ
1: ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕੁਛੂ ਨਾ ਬੁਝੈ ਬਖਸ਼ ਦੇਹੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ
0: ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸਹਿ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨਤਾ ਸੰਘਰਸ ਹੈ
1: ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁਲਾ
0: ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਸਾ
1: ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰ ਨੇਤਰਸਨਾ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗਰਚਨਾ
0: ਐਸੇ ਦੁਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ
1: ਆਦਿ ਅੰਨ ਜੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ
0: ਜਾਕੀ ਸੇਵਾ ਨਮ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੋ ਮੂੜਾ ਮਨ ਹਿਲਾਵੈ
1: ਜੋ ਠਾਕਰ ਸਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਨ ਦੂਰੇ
0: ਜਾਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗੈ ਮਾਨ ਤਿਸਹਿ ਬਸਾਰੈ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ
1: ਸਦਾ ਸਦਾ ਭੂਲਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ
0: ਰਤਨ ਤਿਆ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ
1: ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਤਰ ਕਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨ ਹੈ
0: ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਾਰੈ
1: ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਧਾਰੈ ਧੋਏ ਗਰ ਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ
0: ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਵਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ
1: ਦੂਤ ਪਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ
0: ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਛਪ ਸਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ
1: ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋ ਸਵਾਨ
0: ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਹਾ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ
1: ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾ
0: ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗਹਿ ਲੇਹੋ ਉੜਨ ਵਿਹਾਵੈ
1: ਕਹਾ ਬੁਜਾਤ ਬੁਜੈ ਡੋਰਾ ਨਿਸਕੀਏ ਤੋ ਸਮਝੇ ਭੋਰਾ
0: ਕਹਾ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤੋ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ
1: ਕਹਾ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਕੂਹਾ ਉਸ ਗਵਨ
0: ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ
1: ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ ਜੋ ਬਹਿ ਰਾਏ ਤਾ ਸੋ ਪੀਤ
0: ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਸੈ ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ
1: ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੈ ਚੀਤ
0: ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹੋ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹੋ
1: ਇਹੋ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ
0: ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ
1: ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਭਾਰਤ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂ ਗਨੇਰੇ
0: ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾਂਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ
1: ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਵ ਨਾਮ ਭਗਜਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਚਾਰ ਸਲੋਕ
0: ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕਹਿ ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਸੀ ਜਈ ਬਿਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ ਇੱਕ ਬਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੋਟ ਗਵਾਵੈ
0: ਏਕ ਭੀਨਾ ਦੇ ਦਸ ਭੀਹਰ ਲੈ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾਂ ਕਰੇ
1: ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ
0: ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ
1: ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ पाया।
0: अगणत साहु अपनी देरास, खात पीत बरत आनंद उलास।
1: अपनी अमान कछ बहुर साले, अज्ञानी मन रोस करे।
0: अपनी प्रति तापी खूवे, बहुर उसका विश्वास न होवे।
1: जिसकी बस सागे राख है, पप की आज्ञा माने माथ है।
0: उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल।
1: अनक पांत माया के हे, सर पर होवत जान अनेक।
0: बिर की छाया सो रंग लावे, ओ बिन सह ओ मन पछतावे।
1: ज्योति सह सो चालन हार, लपट रहो ते अंध अंधार।
0: बटाऊ स्यों जो लावे, नेहे ताको हाथ ना आवे के हे।
1: मन हर के नाम की पीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई।
0: मिथ्या तन तन कुटम सुबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया।
1: मिथ्या राजु मन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल।
0: मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता।
1: मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान।
0: अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण।
1: मिथ्या शरण पर निंदा सुने, मिथ्या हस पर दरुक हिरे।
0: मिथ्या नेत्र पेखत पर तिर रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुसवाद।
1: मिथ्या चिन पर विकार कुतावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे।
0: मिथ्या तन ही पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा।
1: बिन मुझे मिथ्या सब पै, सफल दे नानक हर हर नाम लै।
0: बिरथी साख्त की आर जा, साच बिना कह होवत सूचा।
1: बिरथा नाम बिना तन अंध, मुखावता कह दुर्गंध।
0: बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए।
1: गोविंद भजन बिन बिथे सब काम, जो कर प्रते निरार दाम।
0: धन धन ते जन जिह घट बस्यो, हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ।
1: रहत वर कछ अवर कमावत, मानी पीत मुखो गंडलावत।
0: जानन हार प्रभु परवीन, बाहर पेख न काहू पीन।
1: और उपदेश है अपना करै, आवत जावत जन मैं मरै।
0: जिसकै अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख तरै संसार।
1: जो तुम भाने तिन पर जाता, नानक उंजन चन पराता।
0: करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आप मानै।
1: आपे आप आप करत नवेरा, किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा।
0: उपाव स्यान सगल ते रहत, सब कछ जानै आत्म की रहत।
1: पावे तिसलै लड़ लाए, थान थनंतर रहा समाए।
0: सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी।
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम, भग जना कै मन विश्राम। अठ पंज सलोक,
0: काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव। नानक प्रशर नागती कर प्रसाद गुरुदेव। सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी।
1: जय प्रसाद छति अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे।
0: जय प्रसाद सुगंध तन लावे, तिसको सिमरत परमगत पावे।
1: जय प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याज सदा मन अंदर।
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमर हो तिस रसना।
1: जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्यावन जोग।
0: जय प्रसाद पाठ पटम्बर हंडावे, तिसे त्याग तवर लुभावे।
1: जय प्रसाद सुसे सुई जय, मन आठ पहता का जस गवी जय।
0: जय प्रसाद तुझ सब को मान, मुखता को जस रसन बखाने।
1: जय प्रसाद ते रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म।
0: प्रभु जी जप दर गए मान, पावे नानक पद सेती घर जावे।
1: जय प्रसाद अरो कंचन देही, लिव लाओ तिस नाम स्नेही।
0: जय प्रसाद तेरा उला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत।
1: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाकै, मन सनी प्रभ ठाकर प्रभता कह।
0: जय प्रसाद तुझ को न पहुंचै, मन सास सास सिमरो प्रभु उच्चे।
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ताकी भगत करे।
0: जय प्रसाद आभूखन पहरी जय, मन तिन सिमरत क्यों आलस की जय।
1: जय प्रसाद असु हस्त असवारी, मन तिस पर को कबू ना बिसारी।
0: जय प्रसाद बाग मिलख तना, राख पुरोहि प्रभु अपने मना।
1: जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठ सत सहते आई।
0: सहते आजो एक अलख है, इहा उहा नानक तेरी रख है।
1: जय प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान।
0: जय प्रसाद तू आचार बिहारी, तिस प्रभु को सास सास चितारी।
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरो सदा अनूप।
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात।
1: जय प्रसाद तेरी पत्र है, गुरु प्रसाद नानक जस कह।
0: जय प्रसाद सुने करनाद, जय प्रसाद पेखै बिस्माद।
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सो सहजे बसना।
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है, जय प्रसाद संपूर्ण फल है।
1: जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सो सहज समावे।
0: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो।
1: जय प्रसाद तू पट संसार, तिस पर को मूल न मनो विसार।
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तुता को जाप।
1: जय प्रसाद तेरे कारज पूरे, तिसे जान मन सदा हजूर है।
0: जय प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू ता सुराच।
1: जय प्रसाद सब की अत होए, नानक जाप जपै जप सोए।
0: आप जपाए जपै सो नाओ, आप गाए सो हर गुण गाओ।
1: प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास।
0: सब सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए।
1: सर्व निधान प्रभु तेरी मैया, आपो कछु ना किन्हु लया।
0: जित जित लावो तित लगे, हर नाथ नानक किन कै कछु न हाथ।
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम, भगत जना कै मन विश्राम। अठ छे श्लोक।
0: आगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता होए सुन मीता नानक गुणवंता साध जना की अचार्य कथा सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: साध कसंग मखूजल होत साध संग मल सगली को
0: साध कसंग मिटै अभिमान साध कसंग प्रगटै सो ज्ञान
1: साध कसंग पूजे पवनेरा साध संग सुबहुत नबेरा
0: साध कसंग पाए नाम रतन साध कसंग कूपर जतन
1: साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्म है समानी
0: साध कसंग अगोचर मिले साध कसंग सदा प्रफुल
1: साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा
0: साध संग होए सब की रेन साधक संग मनोहर बैन
1: साधक संग न कतहु धावे साध संग अस्तित्व मन पावे
0: साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनी
0: साध संग किसे नहीं बैर साधक संग न बिंगा पैर
1: साधक संग नहीं को मंदा सत्संग जाने परमानंदा
0: साधक संग नहीं हो ताप साधक संग तज सा बाप
1: आपे जाने साध वडाई नानक साध प्रभु बनियाई
0: साधक संग न कबहू तावे साधक संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस अगोचर लह साधु के संग अजर सह
0: साधक संग बसै थान उचै साधु के संग महल पहुचै
1: साधक संग दिड़े सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म
0: साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान
1: साधक संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीट कुटम निस्तारे
0: साधु कै संग सो धन पावे जिस धन ते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सुबा सुर देवा
0: साधु कै संग पाप पलायन साध संग मृत गुण गायन
1: साधक संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम
0: साध के संग नहीं कछ काल दर्शन पीड़त होत निहाल
1: साध के संग कुलूकत हरै साध के संग नर पर हरै
0: साध के संग इहां उहां सुहिला साध संग बिछड़त हर मेला
1: जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न बिठा जावे
0: पार ब्रह्म साध रिद वसै नानक उदरै साध सुन रसै
1: साध के संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तारै
1: साध के संग लगे पर मीठा साधु कै संग गड़गड़ डीठा
0: साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी
1: साध के संग मेटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग
0: साध की महिमा भेद ना जाने जीता सुने तेता बखियाने
1: साध की उपमा तेह गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर
0: साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत
1: साध की शोभा उई ते उची साध की शोभा मूझ ते मूची
0: साध की शोभा साध बनाई नानक साध प्रा भेद न पाई
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ सत श्लोक
0: मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एक बिन कोए नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: दम ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख
1: दम ज्ञानी कै दिस समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
0: ब्रह्म ज्ञानी कै तीर जेक जो बसदा को खोदै को चंदन ले
1: दम ज्ञानी का है गुनाव नानक जो पावक का सही स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे तार ऊपर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही बिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी उचते उचा मन अपने है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पए नानक जिन प्रवाप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दिस अमृत बरसी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी कै होए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै पव संग
0: ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सब जागत ब्रह्म ज्ञानी अह बुद्ध त्याग
0: ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कविता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभाव ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन मा
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अधाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुकुट जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
0: ब्रह्म ज्ञानी की

गुरु की संगत, आप आत्मरस कीर्तन दा महा आनंद प्राप्त कर रहे हो। ऐस वेले सत्कारयोग संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले आप जी नू कीर्तन सरवण करा रहे हन। आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन तन जने दी माओ आए सफल से। आओ आनंद मानिए की।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करते हुए जब खुद को एक नए अंदाज से देखा तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सामने आई, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देखा तो सबसे पहले अपने प्रति थी। और साथ ही हम बात कर चुके हैं रिलेशनशिप्स की, अब आगे बढ़ते हैं और रोल्स के बारे में जानते हैं कि कितने तरह के रोल्स हम हर रोज निभा रहे होते हैं और कैसे उनको मैनेज करना है। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिलेशनशिप्स भी समझ में आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब समझ में आई, और सेल्फ के साथ रिश्ता कैसे जोड़ना है, खुद के प्रति जो जिम्मेवारी है वो। अब रोल की बारी आती है, तो क्या मैं अपने रोल्स को देखूंगा, किस तरह से मैं रोल्स को आगे मैनेज कर सकता हूँ।
1: सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स कि एक अवेयरनेस के साथ अब जीवन जीना शुरू करें कि ये हर दिन जो बीत रहा है, हर दिन में जो हर पल बीत रहा है, इट इज लाइक अ सीन ऑफ द ड्रामा। एक सीन, नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट सीन, सीन्स आफ्टर सीन्स आफ्टर सीन्स इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑल द टाइम पुट टुगेदर इन द होल डे। एंड हर सीन में व्हाट एम आई डूइंग? आई एम जस्ट प्लेइंग अ रोल, बिकॉज हमें समझ में आ गया कि आई एम द एक्टर एंड दिस इज माई रोल। लेकिन एम आई कॉन्शियस वाइल प्लेइंग द रोल?
0: आई थिंक नेवर। और यहां से मुझे एक और बात समझ में आ रही कि जैसे ही मेरी सिचुएशन चेंज होती है मेरा रोल भी तो चेंज हो जाता है। कितनी बार, मतलब मैं पहले अगर हस्बैंड था, उसके बाद जब मैं फादर बना, सडनली देयर इज अ मेजर रोल चेंज, यू नो। और अगर मैं पहले बैचलर था और फिर मेरी शादी हुई तो मेरे और कितने सबके साथ रिश्ते जो है वो चेंज, उसकी कॉन्शियसनेस तो कभी भी नहीं रही।
1: So one is all these roles that I play, लेकिन ये जो आपने नाम भी लिए कि मैं हस्बैंड था, मैं फादर हूँ, मैं कल को ग्रैंडफादर भी बनूंगा, all these roles that I play, इसमें भी I play roles। You see, role means कि हर सीन जो आए उस सीन में मैंने कैसे इनैक्ट किया, that is my role in that particular scene। अब एक है अगर बिना सेल्फ अवेयरनेस के चल रहे हैं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि आई एम द एक्टर, तो हर सीन जो आती जाती है एंड एवरी रोल दैट आई प्ले, आई एम नॉट अवेयर कि मैं अपना रोल क्रिएट कर रहा हूं। आई फील कि मेरा रोल ये क्रिएट हो रहा है आपकी वजह से, सिचुएशन की वजह से। क्यों? इट कम्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ आर सीरीज कि जब हम कह रहे थे कि माई रिस्पॉन्सेस आर बेस्ड ऑन द सिचुएशन, या मेरा जो रिस्पॉन्स है वो परिस्थिति या लोगों पर बेस्ड है, इसका मतलब मैं जो अभी इनैक्ट कर रही हूँ वो किस पर बेस्ड है,
0: क्योंकि जैसे सिचुएशन आती गई मैं उसमें।
1: सो इट वॉज एज इफ सिचुएशन एंड लोग आर रिस्पॉन्सिबल, जिसके कारण आई एम प्लेइंग दिस रोल लाइक दिस।
0: ओके, दे आर इंस्टिगेटिंग मी टू बिहेव लाइक दिस और एक्ट लाइक दिस,
1: राइट। तो फिर हम समझते थे कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है, जिसके लिए हम ये कहते थे कि डेस्टिनी ऑलरेडी फिक्स्ड है, भाग्य मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं तो सिर्फ उसको प्ले कर रहा हूँ ना। इसमें फिर कोई क्रिएटिविटी नहीं चाहिए कि मेरा रोल ऑलरेडी फिक्स्ड है और ये तो मैं सिर्फ करता जा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
0: दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी एज अ ग्रैंडफादर, एज अ फादर, दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी
1: एंड दिस इज फिक्स्ड एंड आई एम प्लेइंग इट लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू, आई एम इनएक्टिंग दिस पर्टिकुलर सीन लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू। जो भी मेरा अभी रिस्पॉन्स है, जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा बात करने का तरीका है, इट इज बिकॉज ऑफ यू। तो इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं थी कि अपने रोल को कैसे प्ले करना है, क्योंकि हमने सोचा डायरेक्टर कोई और है, क्रिएटर कोई और है, मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूं और मैं वो जो किसी ने फिक्स किया हुआ मेरा रोल, मैं उसको प्ले कर रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे हमें ये अवेयरनेस आती गई कि एवरी रिस्पॉन्स स्टार्ट्स विद माई थॉट, सिचुएशन आई, मैंने थॉट क्रिएट किया, तो जब ये फर्स्ट फंडामेंटल रिस्पॉन्स समझ में आया कि मेरी थॉट मेरी चॉइस है, इसका मतलब मेरा रोल मुझे कैसे प्ले करना है वो
0: मेरी अपनी चॉइस है,
1: मेरी चॉइस है। सो बेसिकली सेम लाइफ, सेम रिलेशनशिप, सेम सो कॉल्ड रोल्स, बट नाउ आई विल क्रिएट द रोल
0: द वे आई वांट
1: टू डू इट।
0: बट वी ऑलवेज से द डायरेक्टर इज वन,
1: हु इज द डायरेक्टर,
0: ही इज डायरेक्टिंग, यू नो।
1: नाउ अगेन वी अंडरस्टूड व्हाट्स गॉड्स रोल। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि परमात्मा का क्या रोल है हमारे जीवन में, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आज व्यवहार कर रहा हूँ, या उसको परमात्मा कंट्रोल कर रहा है?
0: नहीं, दैट इज नॉट देयर,
1: दैट इज नॉट देयर। सो आई कैन नॉट से ही इज क्रिएटिंग द रोल फॉर मी, He can give me the wisdom and the power, लेकिन who creates my role?
0: I create
1: my role. तो अगर मैं एक दिन भी इस awareness के साथ चलूं कि scene after scene, I not only play the role, but I create the role.
0: I create the next situation. I create the and I start acting it that way. I can act this way.
1: हाँ, see ना?
0: हाँ.
1: Fixed नहीं है. हर situation में, कोई भी परिस्थिति में, आज आपसे किसी ने बुरा भला कह दिया, वो एक scene है. You can act this way. There will be at least five different ways जिसमें आप act कर सकते हैं. इसका मतलब as an actor, आपका role फिक्स्ड नहीं है, आपके पास चॉइस है कि आप किस तरह से उसको इनैक्ट करना चाहते हैं. आपकी स्क्रिप्ट ऑलरेडी
0: लिखी हुई नहीं है.
1: दिस इज अ वेरी बिग थिंग. ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन हो जाती है. और उससे क्या होगा अगर हम उस अवेयरनेस से चलेंगे?
0: ओह, इट्स सो ब्यूटीफुल. ओनली द सिचुएशन कम्स. अगर आप थिएटर में भी है, अगर मैं प्ले कर रही हूँ और मेरे पास प्री जो रिटन डायलॉग्स नहीं है, इट्स ओनली द सिचुएशन, देन हाउ आई हैंडल इट, इट्स माय चॉइस.
1: तो कितना क्रिएटिव हो जाएगा ये सारा.
0: इट्स अमेजिंग.
1: फिक्स्ड नहीं है कि आपने लाइन्स पूरी याद की हुई है, आपको सिर्फ बोलना है. नहीं, उसमें कोई अवेयरनेस नहीं चाहिए. वो तो एक ऑटोमेटिक जो याद किया हुआ बोल रहे हैं. लेकिन एक है सिचुएशन आई, आपने परिस्थिति को परसीव किया, अपनी क्रिएटिविटी को यूज किया कि इस सिचुएशन में मुझे कैसा रोल प्ले करना है, और उसको प्ले किया. अब वही सिचुएशन में डिफरेंट एक्टर्स विल प्ले डिफरेंटली,
0: बट आई कैन देन टेक द प्ले इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन.
1: एब्सोल्युटली. एंड दैट इज व्हाई वी सेड यू क्रिएट योर डेस्टिनी. व्हेन वी सेइंग आप अपना भाग्य, अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स यू कैन टेक द प्ले
0: इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, इनटू अ डिफरेंट, ओह कम्प्लीटली
1: डिफरेंट, बेस्ड ऑन हर सीन में आप क्या क्रिएटिविटी यूज करेंगे. अगर कोई अपनी क्रिएटिविटी को नहीं यूज कर रहा है, तो दैट पर्सन इज वर्किंग इन अ वेरी ऑटोमेटेड मोड. वो आया, मैंने ऐसे बोल दिया, वो सीन आई, मैंने ऐसे कर दिया, उसने गुस्सा किया, मैंने कर दिया, उसने इंसल्ट की, मुझे बुरा फील हुआ. क्रिएटिविटी नहीं है, ऑटोमेटेड है. तो उसमें फिर जीवन कैसे हो जाएगी? इट बिकम्स बोरिंग. इट इज ऑटोमेटिक, अपने आप ही चल रहा है. मुझे कुछ बहुत ज्यादा उस पर सोचने की जरूरत नहीं है. लेकिन जिस दिन मैंने जीवन को इस तरह से देखना शुरू किया कि हर सीन में मेरा क्या रोल होने वाला है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, दैट्स टोटली माय चॉइस, माय होल वे ऑफ लुकिंग एट इट इज गोइंग टू चेंज.
0: इनफैक्ट इससे पता क्या, एक बहुत बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारा जो माइंड है, जो अभी ऑलरेडी जो जो चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं, उन्हीं पे अपना टाइम वेस्ट करता रहता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, उसकी बजाय विल बी नाउ वर्किंग कि मैं कैसे सिचुएशन
1: इन द प्रेजेंट.
0: यस.
1: इतनी सारी जो आज हम मैनेजमेंट वर्कशॉप सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, व्हाट इज इट अबाउट प्रेजेंट में कैसे जीते, पास्ट और फ्यूचर को फिनिश करें, लेकिन प्रेजेंट में क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि प्रेजेंट में क्रिएटिविटी की जरूरत ही नहीं है. ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है. ये ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है. आप देखो, जब एक लेट्स से कि हम एक रास्ते पर जाते हैं घर से ऑफिस, अब घर से ऑफिस रोज जाते हैं, घर से ऑफिस रोज जाते हैं, डू यू नो आफ्टर सम टाइम आप पूरा रास्ता कवर कर सकते हैं बिना कोई अवेयरनेस के. बिना मतलब आप बिल्कुल कुछ कुछ कुछ और सोचते सोचते आपको पता ही नहीं चलेगा आप एक घंटे में ऑफिस पहुंच गए, राइट? लेकिन एक नए रास्ते पर जाना है तो आप कितनी अवेयरनेस से चलते हैं. अच्छा, अब यहां जाना है या यहां जाना है, यहां जाना है, फिर यहां टर्न करना. आप रास्ते में चीजों को देखेंगे, लेकिन जहां आप उसी पैटर्न पर रोज जा रहे हैं, doesn't require any awareness. That means आपने वो पूरा एक घंटा journey की, लेकिन you were not present. आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे थे. इसी तरह आप जीवन की पूरी यात्रा में journey कर रहे हैं. आप रास्तों पर जा रहे हैं, आप scenes में आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन I am not there because I'm not needed there, because मैं अपना response choose ही नहीं कर रही. Fixed किए हुए responses. कोई गुस्सा करेगा तो मुझे गुस्सा करना ही है, तो उसमें क्रिएटिविटी की क्या जरूरत है अभी? तो विदाउट अवेयरनेस आई वॉज गोइंग थ्रू द जर्नी ऑफ लाइफ, कुछ और सोचते सोचते. तो इधर द पास्ट और द फ्यूचर, एंड उसमें प्रेजेंट वाला मिनट कब निकल गया पता ही नहीं चला. अब जैसे ये अटेंशन आ जाएगी कि हर मिनट एक नया सीन, नया सीन, नया रोल, एंड माई चॉइस हाउ टू प्ले. फिर टाइम है पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना.
0: दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. देन यू नो लाइक अवेयरनेस में फिर हम एक्टिव रहेंगे. हम एक्चुअली यू नो ऑल हमारे सेंसेस जो है वो तैयार रहेंगे कि हाउ कैन बी इनोवेटिवली डू.
1: एब्सोल्युटली. तो फिर जो बात हो रही है बार बार हाउ टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. यू नो द क्वेश्चन इज कि हरेक को ये पता है कि पास्ट और फ्यूचर इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. लेकिन हाउ टू डू इट. क्यों हमारा मन बार बार पास्ट में जा रहा है? क्योंकि उसके पास प्रेजेंट में करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं. अनलेस आई हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू डू. ऑफिस में देखो काम हम करते हैं. कई लोगों का काम होता है जो बहुत मोनोटोनस होता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत मोनोटोनस है. थोड़े समय के बाद करने के बाद आप वो काम करते जा सकते हैं विदाउट बीइंग देयर. आपका मन घर बैठ सकता है और आप अपना सारा यहाँ काम खत्म कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका कोई काम है विच रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस अवेयरनेस डिसीशन एक्यूरेसी, फिर आपके पास टाइम नहीं है यहाँ और वहां की बातें सोचने के लिए, क्योंकि मन फुल कॉन्सेंट्रेशन से उस मोमेंट के ऊपर है. नाउ लेट्स जस्ट लुक एट आवर लाइफ लाइक दैट कि एवरी मिनट अवेयरनेस हाउ टू चूज द रोल. जीवन कैसी हो जाएगी. एंड मेन चीज उसमें जो आएगी इट विल बिकम फन.
0: इट विल बी एक्साइटिंग.
1: इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ
0: फन. एक वो थकान से हम भर चुके होते हैं बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स टू डू. देयर इज नथिंग.
1: अगर आपको मोनोटोनस काम करना हो तो उसके एंड ऑफ द डे कैसे फील होगा.
0: वेरी टायर्ड.
1: लेकिन अगर क्रिएटिव काम करना हो यू एंजॉय. आप कितना भी काम कर सकते हैं सारा दिन एंड येट यू से मोर.
0: आई कैन ऊर्जा बची रहती है
1: क्योंकि क्रिएटिविटी इज द नेचर ऑफ द सोल. हर आत्मा का जो हमने देखा था पर्पज ऑफ लाइफ है इज टू एक्सप्रेस एंड एक्सपीरियंस. लेकिन वो कब होगा? व्हेन आई एम क्रिएटिव. कि हर रोल मुझे कैसे प्ले करना है. तो अपने रोल्स को देखें. आज क्या हुआ? हमने कहीं ना कहीं फिक्स कर दिया. हमने ये सोचा आई हैव टू प्ले द रोल. टुमोरो पूरा दिन बिताएं आई हैव टू क्रिएट द रोल नॉट प्ले द रोल. प्ले द रोल ऐसे लगता है किसी और ने लिखा हुआ है. आई हैव टू प्ले. अगर हम इस कॉन्शियसनेस से चलते हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मुझे तो सिर्फ रोल प्ले करना है, तो मेरी दो चीजें बहुत लिमिट हो जाती हैं एंड वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी. मेरे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. सिचुएशन चाहे कैसी भी हो I am going to respond only in that very fixed, rigid way. And क्योंकि flexibility नहीं है, creativity नहीं है, मेरी अंदर की जो अनुभूति है, जो experience है, it's going to be very because stagnant हो जाएंगे. हम वही चीज you know same चीज रोज play कर रहे हैं. तो आप life को जो enjoy करना है, इसीलिए आज किसी से बोलो कैसा है, चल रहे हैं, हो रहा है, enjoyment वाली feeling, excitement वाली feeling. नो, बिकॉज उनके लिए हर दिन वो सेम बन चुका है. सेम उसी तरह उठना, उसी तरह बच्चों को उठाना, उसी तरह ऑफिस जाना, वापस आना. मोर और लेस एवरी डे इज बिकमिंग लाइक सिमिलर. फिर हम कहते हैं कुछ चेंज चाहिए. यू नो दैट इज व्हाई देयर इज दिस डीप डिजायर के कुछ चेंज चाहिए. चलो हॉलीडे पे जाके.
0: हाँ, मैं वही कहने लगी थी कि स्ट्रेट हॉलीडे पे ले जाते हैं, वहां पे भी बैठे रहते हैं या स्विमिंग पे चले जाते हैं. जनरली अगर हम देखें
1: तो चेंज की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहाँ कोई भी चीज अगर हम बार बार करेंगे तो उसके बाद उसके अंदर कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहता. सो वी लुकिंग फॉर अ चेंज. लेकिन इफ वी लुक फॉर दैट एक्साइटमेंट एवरी डे यू रियली वुडंट नीड अ सेपरेट हॉलीडे बिकॉज एवरी डे वुड बी एक्साइटिंग. के हर रोज कुछ नया करना है. हम नया फिर से सिचुएशंस में ढूंढ रहे हैं. सी हम नया कहाँ ढूंढ रहे हैं? कि कहीं सिचुएशन चेंज हो तो कुछ नया हो. अब सिचुएशन हर टाइम नहीं चेंज हो सकती. आप कितनी बार ऑफिस से हॉलीडे पर जाएंगे? फाइनली आपको 365 डेज में से 11 महीने या 11.5 महीने तो ऑफिस में ही काम करना है ना. आप साल में 15-20 दिन ही हॉलीडे जा सकते हैं. डज दैट मीन कि नया विल बी जस्ट फॉर 15 डेज and the rest 11.5 months the same boring way? No. Why not make every day exciting? And वो तब होगा कि situation नई हो वो नहीं, उसी situation में मैं कोई नया response create करूं.
0: मैं नहीं हो जाऊं.
1: हाँ, creativity here, not necessarily creativity in event, creativity in situation, creativity in responses. Is that possible? A creativity in a response? कि वही सिचुएशन, वही बॉस, वही पेरेंट, वही हस्बैंड, बट आई विल लुक एट अ डिफरेंट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग
0: एंड आई सडनली बिकम वेरी नाइस.
1: हाँ, व्हाटएवर यू कैन.
0: अदरवाइज नाइस से अगर इफ आई सडनली बिकम वेरी बैड.
1: creativity, but which will give you a feeling of happiness. Satisfaction, happiness, contentment. Abhi kya hua, hum bahut sare roles play karte hain, lekin majorly humne do roles mein apne aap ko fix kiya hua. One is at work, one is at home. Ye do roles hain jisme hum ekdam se apne aap ko tight pakad lete hain, lekin hum usme creativity nahi dhoondte. और हम बहुत सीरियसली उन रोल्स को प्ले करना शुरू कर देते हैं. दिस इज माय रोल, यू नो, एंड इस रोल को मैंने इस तरह से प्ले करना है. और जहां उस रोल में हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, वो मजा खत्म हो जाता है. दैट फन ऑफ प्लेइंग द गेम इज ओवर. जैसे जो आपने कहा पोजीशन, यू नो, आई एम अ मदर या आई एम अ मैनेजर, ये फिक्स्ड हो गई है. तो पोजीशन को ही रोल समझ लिया. अब क्या होगा, एक ऑफिस का लीडर है या मैनेजर है या चेयरमैन है, जो भी, इफ ही सेज I am the manager, that's it. Then वो अपने रोल को हर रोज किस तरह से प्ले करेंगे,
0: मैनेजर के रूप में या चेयरमैन के रूप में.
1: परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, एम्प्लॉयज कितना भी उतार चढ़ाव से गुजर रहे हो, मैं तो बॉस हूँ. तो अगर मैंने अपने आप को सिर्फ उसी पोजिशन में,
0: I have to create that image, you know, I have to continue to maintain that image of being a boss.
1: तो मैंने अपनी पोजिशन को सिर्फ अपना रोल बना लिया कि दिस इज माय रोल, आई हैव टू बी द बॉस. सामने आपके एम्प्लॉय बैठा है, वो उदास है, वो परेशान है किसी बात से, लेकिन मैं तो बॉस हूँ. आई कैन नॉट सडनली बिकम वेरी फ्रेंडली विद हिम और समथिंग, बिकॉज हु एम आई? आई एम द बॉस. नाउ व्हाट इफ टुमारो द बॉस गोज टू द ऑफिस विद दिस अवेयरनेस कि यस, ये मेरी पोजीशन है, लेकिन ये मेरा रोल नहीं है. रोल कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस. मैं कभी बॉस का रोल प्ले करूं, लेकिन पोजीशन बॉस की है. कभी मैं एक मोटिवेटर का रोल प्ले करूं, कभी मैं काउंसलर का रोल प्ले करूं. कोई दर्द में है, कोई कंफ्यूजन में है, कोई दो लोगों की आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गई है, कभी मैं एक मीडिएटर का रोल प्ले कर दूं उन दोनों के बीच में, कभी मैं इवन एक पेरेंट का रोल प्ले कर सकती हूँ ऑफिस के अंदर. इज दैट पॉसिबल? बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन आई लुक एट द रोल विद क्रिएटिविटी. लेकिन अगर मैंने सोचा
0: On the other hand, I have to be very, very, you know, like कि मैं बहुत fearful होता हूँ. मुझे ये डर होता है कि एक बार मैंने given किया तो वो they'll start taking me for granted, you know. मैं उनके साथ उस level पर बात अगर करने लग गया तो फिर तो, you know.
1: So that is the fear, but we are not ready to experiment. Just try and imagine कि अगर एक boss सिर्फ एक position को नहीं stick करके इस तरह से अलग अलग roles play करे तो work environment कैसा हो जाए?
0: Very smooth actually.
1: Very light and जो आपस की सबकी bonding होगी बहुत comfortable हो जाएगी. Same with the parent and a child. मैं father हूँ, मैं mother हूँ सिर्फ नहीं, मैं एक friend भी हो सकता हूँ. Again a parent can be a counselor. हमें school में counselor की क्यों जरूरत है? हमें school में how can we need

0: not necessarily only in subjects, but teacher in so many things. आजकल हम parents से बात करते हैं कि बच्चे you know emotionally थोड़े से weak हो रहे हैं. We need to make them stronger. They'll say that is the role of the teacher. Mm. That's the role of the school. Why? Why is that not my role? हमने सोचा हमने तो उनको इतने अच्छे school में भेज दिया. बाकी सारा काम वहाँ होना चाहिए. तो कल अपनी position से हटकर उसको एक रोल की तरह देखें. पोजीशन से अटैच हो जाते हैं कि मैं बॉस हूं और फिर मुझे बॉस ही बनकर रहना है. तो हम उससे हम भी सफोकेटेड हो जाते हैं. इफ यू सी सर्टेन पीपल एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, वो हंसेंगे भी नहीं खुल के. दे विल सिट सो अथॉरिटेटिवली क्योंकि दे वॉन्ट टू रिमेन इन दैट पोजिशन, क्योंकि उन्होंने सोचा यही पोजिशन और यही बना के रखना.
1: अच्छा, ये पर कई लेवल्स पर सिखाया भी जाता है. ट्रेनिंग का भी तो पार्ट है. समवेयर वी आर सो मच स्टक विद द ट्रेनिंग पार्ट कि हमें इसको मेंटेन करके रखना है, तो उसे अंडू करने की कितनी जरूरत है.
0: एवरीवन हैज टू आस्क देमसेल्फ, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग राइट फ्रॉम चाइल्डहुड ज्यादा इसी प्रकार की रही है, पोजिशन ओरिएंटेड. आपको ये बनना है, आपको ये बनना है. क्रिएटिविटी कभी उसका बहुत ज्यादा हिस्सा रही नहीं है. और इसीलिए हमने कहा कि हमें लोगों ने सिखाया क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, लेकिन क्या सोचना है वो कभी टॉपिक में था ही नहीं. आर्ट ऑफ थिंकिंग वो नहीं था. तो जब आर्ट ऑफ थिंकिंग नहीं था तो आर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग नहीं होगा. वो एक सेट पैटर्न था कि आप मदर हैं तो ऐसी मदर होनी चाहिए, फादर हैं तो ऐसे. बट नो, इट्स द सेम थिंग. आई कैन जस्ट प्ले इट इन डिफरेंट वेज. एंड जितना हम उसको क्रिएटिवली प्ले करेंगे, हम उसको एंजॉय करेंगे, उस रिलेशनशिप को भी एंजॉय करेंगे. क्योंकि आज आप देखो, एक पेरेंट और चाइल्ड, एक चाइल्ड अपने पेरेंट के अंदर कन्फाइड क्यों नहीं कर पा रहा. अगर एक बच्चे की कोई भी इश्यू है, वो बाहर वालों को अगर बता सकता है, पेरेंट को क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि वो पेरेंट सिर्फ पेरेंट है. वो पेरेंट अगर फ्रेंड भी बन जाए तो एक बच्चे को बाहर किसी फ्रेंड को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
1: और पेरेंट को भी किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू नो वॉट समवेयर, पेरेंट घर जब आ जाते हैं तब भी वो अपने दोस्तों से या मित्रों से उतनी फोन पे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बच्चा मेरा दोस्त बन सकता है. यू नो यू कैन एक्चुअली, बच्चा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है आपका. आई हैव एक्सपीरियंस इट कि वो आपको इतनी अच्छी सलाह दे सकता है जो कहीं बाहर का कोई मित्र नहीं दे सकता.
0: नाउ दिस इज क्रिएटिविटी. इसलिए इसको एक्सपेरिमेंट करना है. नॉट नेसेसरी कि पहले हमने जो पढ़ा है वो गलत है या जो हम यहाँ अभी शेयर कर रहे हैं वो नॉट नेसेसरी. उसको करके देखना है कि हाउ डू यू फील. लेकिन वो तभी होगा व्हेन वी आर वर्किंग विद द राइट कॉन्शियसनेस कि आई एम एन एक्टर, दिस इज जस्ट अ पोजिशन बट एक्चुअली इट्स अ रोल एंड आई एम प्लेइंग द रोल एंड आई एम नॉट प्लेइंग इट बट आई एम क्रिएटिंग द रोल. हर सीन में सिर्फ ये याद रखना है, How do I want to create my role in this scene? तो आपको कैसे भी सीन मिले, कहीं बहुत उतार चढ़ाव की भी सीन मिले, तो you still have a choice. It's again going back to that fundamental line, I have a choice. हर सिचुएशन में आई विल चूज हाउ टू प्ले द रोल. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू ट्राई, पोजिशन कॉन्शियसनेस नहीं, एक्टर कॉन्शियसनेस कि मैं एक्टर हूं, आई एम प्लेइंग द रोल. दूसरी रीजन जो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं ये करते करते, इज बिकॉज हम रोल से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं
1: और रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं अपने, मेरा कर्तव्य है ये.
0: लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा आइडेंटिटी बन जाती है वो.
1: यही मैं हूँ.
0: तो यही मैं हूँ तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी की मार्जिन नहीं आती, क्योंकि हमने देखा कि अपना परिचय न होने के कारण हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. और जैसे ही हम रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम हर सीन में उसको वैसे ही प्ले करेंगे, क्योंकि यही मैं हूं. तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं होता. आई एम अ पेरेंट, इट्स नॉट आई एम अ सोल प्लेइंग द रोल ऑफ अ पेरेंट.
1: एक्चुअली डजंट कम, यस, यू नो, आपको वो छोड़ देता है थॉट कि आई एम अ सोल, यू नो.
0: व्हेन आई अंडरस्टैंड दैट आई एम द सोल प्लेइंग दिस रोल, तो एक डिटैचमेंट आ जाएगी फर्स्ट. एंड डिटैच्ड होके जो भी रोल प्ले करेंगे वो रोल पहले से भी
1: अच्छा
0: ज्यादा होगा. जब रोल में फिक्स होकर प्ले करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती है. देखो, व्हेन आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द रोल, तो उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए, जितने फियर्स है मेरे मन में, उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए आई कैन बी अग्रेसिव, आई कैन बी डिफेंसिव. इफ लेट्स से माई आइडेंटिटी इज मैं बॉस हूं, अब आप मेरे से जरा हंस के बात करो थोड़ा सा, तो मुझे डर लगने लगेगा कि वो जो मेरा बॉस का इमेज है वो कहीं यू नो कहीं ये मुझे जैसे आपने कहा फॉर ग्रांटेड ना ले लें, तो फिर मैं तुरंत अग्रेसिव हो जाऊंगा क्योंकि मैंने सोचा आई हैव टू गिव यू द मैसेज,
1: प्लीज
0: रिमेम्बर।

0: please remember, who am I? I am the boss, and you better talk to me just like a boss. Same with the parent and the child.
1: Mm-hmm.
0: Parent immediately wo signal convey karega bacche ko, you please remember, I am the parent. That doesn't mean ki hum rudeness aane dein ya, you know, misbehavior aane dein. Lekin koi halka pan, ek, you know, lightness relationship ke andar, that's a part of the, you enjoy that relationship.
1: Mm.
0: Lekin jahan har relationship ko utna tightness se pakda, ki ye, how could he talk to me like this? How could he behave with me like this? Because who am I? I am this. तो कहीं ना कहीं हमारा फिर जो बिहेवियर होता है वो अग्रेशन की तरफ या यू नो वो विड्रॉल की तरफ चला जाता है जस्ट बिकॉज मैं इनसिक्योर हूँ अपनी वो आइडेंटिटी.
2: इनफैक्ट अगर हम देखें तो अगर क्रिएटिविटी है उस रिश्ते में, फन है, वी लुक फॉरवर्ड टू यू नो बींग
0: विद दोस पीपल. यस एब्सोल्युटली.
2: आप उनसे करनी नहीं काट रहे होते बिल्कुल.
0: तो जो हमने पहले डिस्कस किया रिलेशनशिप्स में कि आज हम कट रहे हैं एक दूसरे से, हम कटेंगे नहीं जब हमें ये लगेगा कि एवरी रिलेशनशिप इज अ चांस फॉर मी टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज ऑफ माई क्रिएटिविटी. इट विल बिकम अ लॉट ऑफ फन.
2: और जहां जहां थोड़ी मुश्किल भी है वहां पर, मतलब कहीं कुछ खटास या पहले से कुछ थोड़ा डिस्टेंस आया हुआ है, आई कैन ऑलवेज स्टार्ट डूइंग इट नाउ.
0: एब्सोल्युटली. क्योंकि अब आपके पास चॉइस है कि वो रिश्ते में बहुत खटास है लेकिन आप अपने रेगुलर जो मेथड ऑफ एक्टिंग है, प्लेइंग द रोल, उस पे नहीं जाओ. मेक इट क्रिएटिव, क्रिएट अ ब्यूटिफुल न्यू थॉट उस आत्मा के प्रति. जस्ट गो एंड इनएक्टेड द वे यू नेवर थॉट यू कुड हैव डन इट. अभी मैंने सोचा कि वो मेरे से ठीक से नहीं बात कर रहे तो मैं ठीक से क्यों बात करूं. फिक्स्ड वे ऑफ एक्टिंग द रोल. कल मैं सच कम ऑन फॉरगेट ऑल दिस,
2: कंसंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस.
0: लेट मी गो एंड प्ले इट इन अ वे दैट इवन आई विल सरप्राइज माय सेल्फ. मैं आपको क्या सरप्राइज करूं, मैं तो खुद ही सरप्राइज हो जाऊं कि वो मैंने कैसे कर लिया ये. दैट इज क्रिएटिविटी.
2: एंड कंसंट्रेट ऑन योर परफॉर्मेंस,
0: ओनली माय परफॉर्मेंस. वैसे भी आपके परफॉर्मेंस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती. मैं सिर्फ कंप्लेन कर सकती हूँ या जजमेंटल हो सकती हूँ. बट इफ आई जस्ट फोकस ऑन माइंड, you see how much fun we are going to have in the whole day.
2: Oh, wonderful. Spirituality teaches you fun.
0: Yeah. Spirituality is a lot of fun.
2: Yes. That's what we are understanding. Thank you so much, Sister Shivani, aaj ki is puri baatcheet ke liye. Om Shanti.
0: Om Shanti.
2: Ab apne roles पर काम करना शुरू करें. आई थिंक इट विल बी रियल फन. और जो हमारे अंदर का एक्टर छुपा है अपनी परफॉर्मेंस को, जैसे कि सिस्टर शिवानी ने एंड में आई थिंक यू गिवन द पंच लाइन कि अपनी ही परफॉर्मेंस से अपने आप को चकित कर दें, एक नए अंदाज से खुद हम एक्ट करना शुरू करें, तो वो और वो एक्टिंग जितनी नेचुरल होगी, जितनी हमारी अपनी होगी, उतना हम उसे एंजॉय करेंगे. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में हम हर बार की तरह आपसे यही कहेंगे, ये प्रोग्राम आपका अपना है, ये मंच आपके लिए है. कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, आपका हम स्वागत करते हैं. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट का ये पूरा सिलसिला आगे भी चलता रहेगा. आप हमारे साथ जुड़े रहिए. आज आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.
3: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: रेडियो। हाँ जी 1674।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
3: हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: रास्ता।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच वी आईएमई एडवाइजर।
5: हां जी रेडियो
6: यार, तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
6: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
8: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂ ਜੀ 1604।